0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई पहुंच चुका हूं मैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किससे खबरें कहानियां शेयर करने के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए। तो कुर्सी की वेटी बांध लीजिए, यह है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और याद दिलाना चाहूंगा फिर से, गिवाओ मुशाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नहीं, बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को यहां बिंदास बनाने के लिए बातें तो हम आपसे बहुत प्यारी प्यारी करेंगे, मगर बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट गाने भी सुनाएंगे।

थोड़ी देर में गाना आपके रेडियो सेट में प्ले होगा, उसके साथ साथ अभी हम शो की शुरुआत करेंगे मिका पाजी की आवाज में। है जवानी इश्क होना है मूवी का गाना है ये, तो तैयार हो जाइए। और भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए 3311063 पर, बताइए हमें क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ, आज के इरादे क्या हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM, बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे हमारे पास आए हैं मैसेजेस, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अस्मा का मैसेज आया है, अस्मा ने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव करिए, थैंक यू जी, थैंक यू, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग में विश करता हूँ। और संधू जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग कतर, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। सभी आसाची का मैसेज आया है, लिखा है हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, सर मुझे मत बोलिए सर, प्लीज सर। आप सर बोलते हो, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं सर, हम तो अभी भी छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे ही हैं। थैंक यू, और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जिन्होंने लिखा है स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ, व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, That is strength. Good morning, करके बिल्कुल सही बात, हार नहीं मानना है, चलते रहना है। और ऋषिन का मैसेज आया है, ऋषिन ने भी एक फोटो भेजा है, लिखा है Today's struggle will become tomorrow's strength. Keep moving forward. Thank you so much, thank you so much. बिल्कुल सही बात कही है आपने, और मैं भी इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, लिखा है Life is really nothing without love and care. Give it to everyone, but don't expect it back because it's a feel, not a deal. Wow, क्या बात कर दी भाई, ये बहुत बड़ा लेसन है जो बहुत बाद में कभी कभी समझ में आता है या फिर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर अगर हम किसी को प्यार से ट्रीट करते हैं, हम किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी हमें ऐसा ही ट्रीट करे, तो फिर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने लायक ही होगा, क्योंकि कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे हम ट्रीट करते हैं लोगों को वैसे वो ट्रीट करें। अगर वो करते हैं वेल एंड गुड, मगर उनके करने ना करने से कभी भी हमें खोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में इतना हमें सिक्योर होना है कि लोग हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे कभी भी हमें अपना मूल्यांकन नहीं करना है। यार क्या बात कर दी यार, दो मिनट के लिए मैंने दो कदम पीछे ले लिए। मूल्यांकन सब मैंने आखिरी बार हिंदी की कक्षा में सुना था, हिंदी की टीचर बोल रही थी मार्क्स के बारे में, तब बढ़िया। नाजी जी का मैसेज आया है, लिखा है मे द ब्राइटनेस ऑफ दिस मॉर्निंग स्प्रेड जॉय इन टू योर लाइफ, विशिंग यू अ परफेक्ट डे, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। अबरार भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी बोला है गुड मॉर्निंग करके, तो आप सभी को एक और बार एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। और यहीं पे यही बात करते हुए अगला गाना हम प्ले करना चाहेंगे, मगर उसके पहले बता दूं कि गानों के उस पार जब हम वापस आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं परखने के लिए आ रहा हूँ कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सब से कितने तेज हैं। Stay tuned, यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑल ओवर पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए, लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ब्लैकबोर्ड स्टोरीज को।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेकर हम आए हैं। सवाल यह है, विच कंट्री हैज द मोस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, ये आपको बताना है। सवाल का जवाब देना है तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। मैं सवाल फिर से पूछता हूँ, विच कंट्री हैज द मोस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, बताइए हमें आप मैसेज करके 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे अदनान सामी की आवाज में डार्लिंग मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:50 होने वाले हैं और यहाँ पे जो है मैंने एक सवाल पूछा था ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, और मेरे पास मैसेजेस आए हैं थोड़े थोड़े। वाहिदुल जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है आंसर इज स्वीडन। सज्जाद भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, उन्होंने बोला आंसर इज स्वीडन। अल्लाह ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आई विश यू द सेम। उसके साथ साथ मुझे अंजू थॉमस का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है स्वीडन। संधू जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है स्वीडन। और अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है स्वीडन। दीपक जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी लिखा है स्वीडन। तो सब ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है स्वीडन, तो तालियां बजेंगी भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत बढ़िया। और बता दूं कि कितने आइलैंड्स हैं स्वीडन के पास, इसका भी एक काउंट मेरे पास है। 220,000 आइलैंड के करीब करीब जो हैं इनके पास आइलैंड्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा आइलैंड्स हैं स्वीडन के पास। तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसी खुशी में आप सबके लिए यहाँ पर हम स्पेशली प्ले करेंगे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर। क्या कमाल है, वाह, दिलजीत की आवाज़ में बहुत प्यारा गाना है। और इस मूवी से भी उम्मीदें हैं क्योंकि इम्तियाज़ अली की मूवी है, उसका ट्रेलर हमने देखा, काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट हमें लगा। देखते हैं कैसी होगी मूवी। फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

विशाल ददलानी की आवाज में दोस्ताना मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है तापमान का हाल देख लेते हैं, बात कर लेते हैं मौसम, क्या आज मौसमिंग कर रहा है ढंग से कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अभी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, आज का लोवेस्ट टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट टेम्परेचर होगा 45 डिग्री सेल्सियस और हवा बह रही है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। हवा में उड़ाने का दम तो नहीं है, मगर अगर गर्म हवा है तो शायद पिघला सकती है, मगर पिघलेंगे नहीं हम सकती। हम तो भाई जाकिर भाई के शिष्य हैं। बढ़िया। यहाँ पे अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यार मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा बाहर के नज़ारे दिखाइए मुझे, फोटोज खींच के भेज दीजिए 3311063 पर, बताइए मुझे क्या क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ और मौसम कैसा है आपके लिए। डिटेल में मैसेज कीजिए 3311063 पर। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और अरिजीत और आकाशा की आवाज में सुनते हैं कॉकटेल 2 का गाना। Stay tuned, yeah, Radio Olive 106.3 FM. और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabak Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, I'm Sohali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm the number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
10: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
11: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए।
12: ओ, सावन में लग गई आग दिल मेरा।
11: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका। और नाम है पाजी का मीका। रेडियो ऑलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:19 हो रहे हैं और यहां पे जो है मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग स्टक इन ट्रैफिक करके, उन्होंने एक फोटो भेजा है। थैंक यू सो मच जावेद साहब ये मैसेज मुझे भेजने के लिए। जावेद साहब मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रैफिक कहाँ पे है, मतलब किस एरिया में है, ताकि मैं अगर बता दूं लोगों को कि इन केस इस एरिया से आप गुजर रहे हैं तो फिर इस एरिया से गुजरने का प्लान है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ पॉजिटिव बात ये भी है कि आपको थोड़ा और वक्त मिल रहा है हमारे साथ, अच्छी बात है। उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है दीपक जी का, दीपक जी ने भी मुझे एक फोटो भेजा है। उसके साथ मुझे एक और मैसेज आया है अशफाक जी का, उन्होंने भी मुझे एक फोटो भेजा है, आसमान का एक फोटो भेजा है, काफ़ी क्लियर स्काई, एकदम बढ़िया तरीके से अपने सूरज मामू जो है चमक रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपने वक्त निकाल के फोटो भेजा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी खुशी में काम करते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं, मगर मैं बता दूंगी थोड़ी देर में जब गानों के उस पार में वापस आऊंगा तो फिट है तो हिट है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के 4 रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए 1 कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए 1 एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
1: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पे वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है।
0: फिट है तो हिट है में आज हम एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कुछ टाइम से सोशल मीडिया में जो है इधर उधर चल रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है खाने के बाद वॉक करना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये एक नुस्खा है जो हमने देखा होगा हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स बचपन में सब हमने कई बार देखा होगा। खाने के बाद थोड़ा सा लोग चलते हैं। अब उसके पीछे का साइंस क्या है वो मैं बताता हूँ। रिसर्च ये दिखाती है कि मील के बाद सिर्फ 10 या 15 मिनट की लाइट वॉकिंग भी ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। जब हम खाना खाते हैं स्पेशली कार्ब्स वाले मील्स तो ब्लड ग्लूकोज नेचुरली इंक्रीज होता है। अगर खाने के बाद हल्का हल्का वॉक करेंगे तो मसल्स मूवमेंट के लिए ग्लूकोज यूज करना पड़ेगा बॉडी को। और उसके फायदे क्या होंगे, ब्लड शुगर स्पाइक्स कम हो जाएंगे, ग्लूकोज सेल्स तक ज्यादा एफिशिएंटली पहुंच पाएंगे और इंसुलिन को अपना काम करने में अच्छी मदद भी मिलेगी। स्टडीज ने यह भी शो किया है कि मील के तुरंत बाद या 30 मिनट के अंदर की गई लाइट एक्टिविटी लॉन्ग वॉक से भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए। इसके एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, पोस्ट मील स्लगिशनेस जो है खाना खाने के बाद जो हमें थकान महसूस होती है यार अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा ऑफिस में ही सो जा ऐसा अगर कर लगता है तो वो कम हो जाएगी। डेली मूवमेंट जो है माइक्रो तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। मोटी मोटी बात यह है कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलिए, ये एक सिंपल हैबिट है जो डाइजेशन और आपके ब्लड शुगर दोनों के लिए बहुत अच्छी है और आपको सपोर्ट कर सकती है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं शंकर महादेवन और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। सुनते हैं पटियाला हाउस का गाना। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: हाय मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

आप सभी का एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्टडी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वीजा की एनुअल स्टे सिक्योर स्टडी के मुताबिक कतर में कंज्यूमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एआई टूल्स को बहुत ही तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, ये पता चला है। और रिसर्च की जो की फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि 90% कंज्यूमर्स ने शॉपिंग में एआई का यूज किया है। और एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है, प्राइस कंपैरिजन के लिए 60%, गिफ्ट आइडियाज ढूंढने के लिए 58%, रिव्यूज और रेटिंग चेक करने के लिए 56%, एंड 95% लोगों का मानना है कि एआई और नई टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा फास्ट और इजी बना रहे हैं। एंड 56% कंज्यूमर्स का ये मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान नए ब्रांड्स और रिटेलर्स वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एआई या फिर जो नए टेक्नोलॉजीज हैं कितने ज़्यादा हमारी लाइफ में घुस चुके हैं, कितना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गाना प्ले करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
6: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
7: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
6: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
7: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
6: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव and win.
8: Dr. On Air brought to you by Naseem Healthcare.
9: Hi everyone, it's me Dr. Afzal, Naseem Healthcare. People are always suspicious about when the tooth to get filled and how they can recognize themselves that the tooth needs to be filled. Yeah, if you can make out brown discoloration or black discoloration or a chalky white appearance on the surface of your teeth, just immediately consult your dentist and get the required tooth or teeth to get filled. Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
8: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOT with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
5: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
6: ਮਾਲਾਬਾਰ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਬਿੰਦਾਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:16 हो रहे हैं और मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। सुषमा जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, एक फोटो भेजा था जिसमें उन्होंने एक सिग्नल के पास से फोटो भेजा था। मुझे लगता है बिनहमूर के पास का एरिया है ये, और बिनहमूर नहीं, अबू हमूर के पास का एरिया है। और लिखा है गुड मॉर्निंग बट लुक्स लाइक मिड नून करके। जी हाँ, थोड़ा है तो सही, गर्मी धीरे धीरे बढ़ भी रही है वैसे। और उसके साथ साथ मुझे सरिता जी का एक मैसेज भी आया है। सरिता जी ने मुझे एक ऑडियो भेजा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियो लोड नहीं हो रहा है, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है। सिमिलरली मुझे एक और मैसेज आया, एक और ऑडियो नोट आया है अनवर भाई का, उन्होंने भी मुझे एक मैसेज भेजा बट उनका ऑडियो भी लोड नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे ऑडियो नहीं लोड हो जाता है, तो मुझे आप टेक्स्ट भेज दीजिए अगर ऐसा होता है तो। अगर ऑडियो लोड हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ज़रा टेक्स्ट भेज दीजिए प्लीज़, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे से। और उसके साथ साथ देखिए, अभी का टेम्परेचर अगर हम देखें तो पता चल रहा है इट्स 37 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ेगा धीरे धीरे टेम्परेचर जो है, बढ़ने ही वाला है। 39 हो गया, एक्चुअली 39 हो गया, मैंने जब रिफ्रेश किया पेज तो पता चला 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो यही ख्याल रखिएगा अपना, पानी वानी पीजिएगा अच्छे से, हाइड्रेटेड रहिएगा, और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू स्किन केयर में, ठीक है, ये मत भूलना। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव, सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:30 होने वाले हैं और यहाँ पे बता दें कि एक ही एक दिन बचा हुआ है किसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के किक ऑफ के लिए।

1163 पर। और उसके साथ साथ एक और चीज़ खुशखबरी ये है कि फीफा के जो चीफ हैं उन्होंने तो ये भी बोला था कि भाई अब वो चाहते और वो चाहेंगे कि जो 10 वर्ल्ड कप है वो कतर में हो। उनको इतना अच्छा लगा कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, और जो लोग उस टाइम पे यहाँ पे थे उन्होंने तो सही में बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्जॉय किया था। मैं नहीं था उस टाइम पे, मैं मिस कर गया, बट कोई बात नहीं। जितने भी लोगों ने यहाँ पे मुझे बताया है इसके बारे में, मतलब जिस प्यार के साथ उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बोला है, उनकी बातों से मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग, वो जज्बात जो है वो मैं समझ सकता हूँ। तो ज़रा मुझे बताइए कि आपके हिसाब से 2026 का फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन होगा? क्या ब्राज़ील अपने जर्सी में छठा स्टार लगवाएगी, या अर्जेंटीना फिर से एक और बार टाइटल जीत के अपने टाइटल को डिफेंड करेगी और अपने जर्सी में चौथा स्टार लगवाएगी, या जर्मनी अपने जर्सी में पाँचवा स्टार लगवाएगी, या फिर हम सबको सरप्राइज करके कोई अलग टीम आएगी? बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, केके की आवाज में न्यूयॉर्क का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOD with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: सुनिए हर सुबह 6 से 10 RJ सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहाँ पे मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं. मुझे मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने मैसेज भेजा है. उन्होंने लिखा है कि यस सुदेव, फीफा 22 वाज ऑसम. बहुत ही स्पेक्टेकुलर इवेंट था. इट वाज आवर प्रिविलेज दैट वी विटनेस दिस बिग इवेंट बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ कतर. अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई बिलीव नो कंट्री कुड होस्ट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से जितना कतर ने किया था, माशाल्लाह करके. बिल्कुल सही बात है. मैंने एक्चुअली जिस एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा टूर्नामेंट हुआ था उसके बारे में बहुत तारीफें सुनी. मैंने बहुत सारी तारीफें सुनी, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. कमाल की बात यह है कि मेरा जो रूममेट था केरला में, उसे कतर में भेजा गया था हमारे ऑफिस से. वो मीडिया में काम करता, मतलब एज ए जर्नलिस्ट एंकर काम करता था. तो वो आया था यहाँ पे, तो वो भी मुझे बता रहा था कि भाई बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आ गया मतलब. और मैं उसे बार बार बोलता था मैसेज करके, भाई कतर से आएगा तो अतर लेके आइयो करके. वो अतर लेके ज़रूर आया, और कभी मैंने सोचा नहीं था उसके बाद शायद मुझे खुद कतर आने का मौका मिलेगा करके. बट या ये कहता है ना कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, कुछ वैसा ही मौका है. अभी वो मेरे से कहता है कि भाई कतर से आएगा तो अतर लेके आइए करके. बट या फीफा के बहुत बहुत बहुत लोगों ने जो है इसके बारे में बात की है, तारीफ की है. और कुछ लोगों से मैं मिला जिन्होंने यहाँ पे वॉलंटियरशिप भी किया था, उनको भी बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ उन्हें भी सीखने को मिला. और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है यहाँ पे, और मैसेज मुझे भेजा है मोहम्मद जहान आलम ने. उन्होंने बोला है ब्राज़ील विल बी द चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप 2026 करके. जी मैं भी यही चाहता हूँ कि हो जाए, बस हो जाए. प्लीज़ हो जाए, दुआएं हैं मेरी, मन्नत मांगता रहता हूँ मैं इसी मामले में. हो जाए तो बढ़िया रहेगा, छठा एक स्टार भी लग जाएगा जर्सी में. और जिस तरीके से ब्राज़ील की टीम है, अच्छी टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसके प्लेयर्स ने डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स के लिए दी है. उम्मीद करता हूँ कि एज ए टीम, एज ए यूनिट अगर वो खेले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा वो खेलेंगे, अच्छी तरीके से वो खेलेंगे. साथ ही साथ मन में ना एक और छोटा सा वो है कि यार काश रोनाल्डो को भी मिल जाए, यार पोर्चुगल को मिल जाए तो भी उतना बुरा नहीं लगेगा. क्योंकि रोनाल्डो बेचारा बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, वो बेचारा नहीं जीत पाया अभी तक. उसका भी आखिरी वर्ल्ड कप है, तो हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो देखते हैं. अब देखिए जो ऊपर वाला चाहता है वही होगा, है ना, वही है उसका मतलब. अब हम भी देखते हैं कि कितने कितने लोग रोनाल्डो को सपोर्ट करते. ज़रा मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मुझे मैसेज कीजिए. फिलहाल यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे है एक सवाल का स्पेस, और उस स्पेस में सवाल पूछने के लिए हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो है शुरू होने वाला है, और कुछ दिनों से मैं उससे रिलेटेड सवाल जो आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रिविया जो आपको बता रहा हूँ। तो आज का सवाल ये है, वॉट इज द फादेस्ट एन एशियन कंट्री हैज गॉन इन द फीफा वर्ल्ड कप। एक एशियन कंट्री, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के इसमें कितना दूर तक गई है, कौन से लेवल तक पहुंची है, ये आपको हमें बताना है। और कौन सी टीम कौन से साल में कहां तक पहुंची है, ये आपको बताना है। और आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 3311063 पर, और मैसेज कर दीजिए तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी सही जवाब कौन सा है बताइए मुझे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक CR7 के फैन ने यहाँ पे मुझे मैसेज किया है, और मोहम्मद इमरान भाई ने मैसेज किया है, बोला है कि CR7 करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी एशियन टीम है जो सबसे दूर तक चली है फीफा वर्ल्ड कप में, एक फीफा वर्ल्ड कप में कौन से लेवल तक गई है, सेमीफाइनल, फाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल, ऐसी कौन सी एशियन टीम है जो सबसे दूर तक गई है, बताइए। और देखते हैं किन किन को पता है सवाल का जवाब। इतना आसान सवाल नहीं है, थोड़ा सा टफ है। और यहाँ पे हम गाना प्ले करने वाले हैं, है जवानी तो इश्क होना है, हाडी संधू और लरान बाजवा की आवाज में। Say what?

0: Wow. Olive Short Break. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Mehul Kapoor.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी टीम है जो फीफा वर्ल्ड कप में, ऐसी कौन सी एशियन टीम है जो फीफा वर्ल्ड कप में दूर तक गई है, और दूर तक गई तो कहां तक गई है मैंने पूछा था, और उसका जवाब हमारे पास आया है। मुझे अश्मा ने मैसेज भेजा है, अनिल जी ने मैसेज भेजा है, और रश्मिका जी ने मैसेज भेजा है, असलम भाई ने मैसेज भेजा है, उसके साथ साथ इरफान भाई ने मैसेज भेजा है। इन सब ने सही जवाब दिया है, और जवाब है साउथ कोरिया। 2002 के वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया सेमीफाइनल तक गई थी। बिल्कुल सही जवाब भेजा सबने, तो आपके लिए बजेंगी यहाँ पे बढ़िया वाली तालियां, तो तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल इतना आसान नहीं था, फिर भी आप सही कर गए, मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा लगा। अब थोड़ी देर में हम आएंगे आपके साथ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बातें करने के लिए। अब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, वो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड बात ही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में VAR में कुछ नए एडिशन्स आए हैं। वो क्या एडिशन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:31 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी एक नया सीजन आता है फीफा वर्ल्ड कप का, तो नए कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी आते हैं। पिछले बार जब कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, तो हमने सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी देखी थी। वैसे ही इस बार 2026 वर्ल्ड कप में भी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, और वो नई चीज़ें स्पेसिफिकली VAR के लिए आ रही हैं। हम सब जानते हैं VAR के बारे में फैंस थोड़े डिबेट करते हैं, कहते हैं कि यार ये उतना ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे डाइसी ओपिनियंस है उसके बारे में। मगर VAR को कुछ एडिड पावर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसका टेरिटरी थोड़ा और एक्सपैंड हो रहा है। तो VAR जो है अब इनकरेक्ट कॉर्नर किक्स जो है उसको रिव्यू कर सकता है, उसके साथ साथ सेकेंड येलो कार्ड सिचुएशंस को रिव्यू कर सकता है, उसके साथ साथ गोल के या फिर पेनल्टी के पहले जो ऑफ द बॉल इवेंट्स होते हैं उसको भी वो रिव्यू कर सकता है। ये नया इन्फॉर्मेशन जो है आया है इस वर्ल्ड कप में, ये चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा। और यही बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हैं और मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए।
2: सावन में लग गई आग दिल मेरा।
1: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका। और नाम है पाजी का मीका। रेडियो ऑलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे।

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
4: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

तो भाई टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टेशन क्लॉक में 9:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप एक कशिश आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए, लाइफ मस्त है लेकर आपकी लाइफ को मस्त बनाने के लिए। तो खुली भाव से कशिश का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। और जाते जाते जाते हम यही याद दिलाएंगे आपको कि अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो भाई फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
4: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
5: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
4: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
5: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
4: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
6: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
7: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
8: होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर होम.

0: कशिश के आने का वक्त हो और नाराज सवेरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. इसीलिए एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुना रही हूँ.
1: सुनो प्रिया,
0: इस गाने को एंजॉय करो.
1: रहो प्रिया,
0: मैं थोड़ी सी देर में आती हूँ.

देखिए आपका नाम प्रिया है या नहीं है सुनना जो है वो मुझे थोड़ा सा आपका जरूरी सा है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि नाराज सवेरा मेरे होते हुए आपका कैसे हो सकता है और अगर आज वेंसडे का दिन हो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है क्योंकि वेंसडे आता है अपने साथ एक खुशखबरी लेके कि यार देखो वीकेंड जो है वो आने वाला है। जैसे बारिश के पहले जो है या बारिश की थोड़ी से बाद जो है वो एक भीनी भीनी सी महक आने लग जाती है ना कि यार अब जो है वो मानसून आने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वीकेंड की खुशबू आ जाती है। खैर अभी तो समर सीजन चल रहा है सो थोड़ी देर में जो है टेम्परेचर की बातचीत जो है वो जारी रखेंगे लेकिन लेकिन लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातचीत जो है वो भी हम करने वाले, चाहे वो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की बात हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपकी किचन की बात हो या आपको मोटिवेट करने के लिए एक अमेजिंग स्पीकर की बात हो, सब कुछ आज हम लाइफ मस्त है शो में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुना देती हूँ। मेरा करंट फेवरेट जो है ये गाना बना हुआ है, गाने का नाम ए अजनबी है, आदित्य रिखारी की आवाज में, कोक स्टूडियो भारत का ये गाना है। सो इस गाने को आप एंजॉय कीजिए और फटाक से वापस से लौट के आइए ये सब एंजॉय करके। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: हाँ जी, तो स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:12 यानी 10:12।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hello to all the listeners of

0: कोई आपका हो या ना हो, आपकी कशिश आपकी जरूर रहेगी। दर्शन रावल की आवाज में ये गाना आपने इंजॉय किया, उनका सिंगल है ये गाना। लेकिन अब दर्शन रावल सिंगल नहीं है, अब वो भी मैरिड है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड से जो है शादी करी है। एंड मुझे जो है एक रिसर्च जो है इंस्टाग्राम पे ऐसी स्क्रॉल करते करते मिली और ये गाना आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये गाना आपको जो है सुनाते हुए इसके बाद रिसर्च भी बता दूं। सो क्या है ना कि रिसर्च ये कहती है कि जब भी आप अपने पार्टनर से रूडली बात करते हैं या अपने पार्टनर को जो है एक बार चिल्ला देते हैं या इरिटेट हो जाते हैं उन पे, तो उनके हार्ट की जो एक वेन होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एंड ये जो है अगर बहुत कॉन्स्टेंटली होता है सो काफ़ी जो है डैमेज होता है हार्ट को, एंड आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है, एंड इससे जो है आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो भी कम हो सकती है। सो अगर आप अपने पार्टनर से रूडली बात कर देते हैं या उन पे चिल्ला देते हैं या जनरली अपनी इरिटेशन उन पे निकाल देते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की हार्ट हेल्थ पे ये काफ़ी जो है बुरा असर डाल सकता है। एंड एक आध बार होता है तो चल जाता है, अगर ये डेली बेसिस पे हो रहा है तो फिर तो कंसर्न वाली बात है। देखो ये वाला गाना सुनने की नौबत देखो नहीं आनी चाहिए आपके पार्टनर की। खैर अभी बात जो है कर लेते हैं टेम्परेचर की, इस वक्त मौसम कैसा हो रहा है। सो अगर आपने अपने पार्टनर का दिल दुखाया तो आपके लिए तो खैर मौसम खराब है, बाकी लोगों के लिए मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है। सो गर्मा गर्म मौसम के बीच अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। इस वक्त के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। यानी अगर एकदम पीक दोपहर की बात करें तो टेम्परेचर 45 हो जाएगा, एंड शाम तक यानी रात तक जो है टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक खिसक सकता है। सो और कुछ कूल हो या ना हो इस मौसम में, हमारे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जरूर कूल है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: कूल सॉन्ग। सो कूल सॉन्ग पहला नशा का रीमिक्स वर्जन है ये। इस गाने को एंजॉय करो, और अगर आपने अपने पार्टनर का दिल दुखाया है सो उसे गाना डेडिकेट कर दो, बता दो कि कितना प्यार करते हो आप उन्हें। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

ब्रो आज की तो ना वाइब ही अलग है। मतलब मुझे नहीं पता है कि ये गाने मैंने कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आज लगाए हैं, लेकिन एक अलग टाइप की वाइब है आज। बताओ है या नहीं है। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो जो है आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए इंस्टाग्राम पर जो है मैं अपने सबसे ज्यादा वक्त बिताती हूँ एंड वहां पर इंस्टाग्राम ने मोस्ट अवेटेड अगर मैं किसी फीचर की बात करूँ तो वो लॉन्च कर दिया है एंड दैट्स रीअरेंजिंग योर फीड। मतलब आप अब अपना सबसे बेस्ट कंटेंट जो है वो सबसे आगे लगा सकते हो, उसके बाद वाला या जो पिक्चर्स आपको अच्छी लगती हैं आप वो पहले लगा सकते हो या बस एस्थेटिकली अपना जो फीड है उसको मैनेज कर सकते हो। That's the most requested feature of Instagram कि यार हमें जो है ऐसे थोड़ा aesthetic feed को बनाने के लिए ऐसे rearrange करने का मौका चाहिए। अब ये वाली बातें तो खैर आपको कल से सब बता रहे हैं। सिमरन ने भी कल डिटेल में इस पर अपने शो में बात करी थी एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जो Instagram feed है उसको rearrange कर लिया है, लेकिन Instagram के साथ एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं जिस पर मैं अभी बात करना चाहती हूँ, जिस इशू को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि लोगों के व्यूज जो हैं वो अब बहुत कम आ रहे हैं। मतलब कंपेरेटिवली जो है वो कम हो गए हैं लोगों के व्यूज। तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम ने अब ये फैसला लिया है कि पहले जो है जब पहले 3 सेकंड में आप इंस्टाग्राम पे रील देखा करते थे तो व्यू काउंट हो जाता था, लेकिन अब अच्छी तरीके से व्यूअर को जो है आपकी रील पे रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तब जाकर आपका व्यू जो है वो काउंट होगा। यानी वो जो लोग होते थे ना जो क्लिक बेट के चक्कर में शुरू के 3 सेकंड में बस कुछ दिखा दिया एंड उसमें रील काउंट हो गया, नहीं, अब आपका कॉन्टेंट जो है वो दमदार होगा, अच्छा होगा, तभी जाके आपका व्यू जो है वो काउंट होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी है एंड कहीं ना कहीं एक बुरी चीज भी है, क्योंकि जो लोग क्लिक बेट पे चल रहे थे, जो शुरू के 3 सेकंड में जो है कंटेंट इंटीग्रेट कर दिया करते थे, उन लोगों का काम चल रहा था, लेकिन अब अच्छा कॉन्टेंट जो है उसी को रिकॉग्निशन मिलेगी एंड दैट्स ग्रेट आई गेस, है ना।

0: हरी दोपहरी में जो दिए जलाए हमने, हाँ हाँ हाँ मजा आ गया। प्रेम रतन धन पायो मूवी से ये ट्रैक आपने इंजॉय किया। कितनी खूबसूरत लगी है यार सोनम कपूर इस मूवी में, और स्पेशली इस गाने में। मुझे लाइलैक कलर की, लैवेंडर कलर की जो उन्होंने साड़ी पहनी है, ओ माय गॉड। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड अगर सोनम कपूर की बात कर ही रहे हैं तो मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि कल सोनम कपूर का जो है हैप्पी वाला बर्थडे था, एंड बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग फोटोज जो है वो मुझे देखने को मिली है इंस्टाग्राम पे उनकी। बहुत ही छोटी बर्थडे पार्टी उन्होंने रखी थी सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कितनी खूबसूरत लगती है, यानी वो मम्मा वाला जो ग्लो है वो उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। यार अब बॉलीवुड पर आए ही हैं तो ये बात भी कर लेते हैं कि कौन सी नई रिलीजेज जो है वो होने वाली है। सो जैसे अभी पिछले दो दिनों से मैं बता ही रही हूँ कि मोस्ट अवेटेड एक मूवी है इम्तियाज अली की, मैं वापस आऊँगा, वो आने वाली है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एक टीजर की जो आज आलिया भट्ट का रिलीज हुआ है। मूवी का नाम है अल्फा, जो पहले जो है 10 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब जो है 3 जुलाई को हो रही है, ताकि एक लंबी विंडो जो है वो मिल सके। खबरें जो है ये भी आई थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने जो है अप्रोच की थी इस मूवी को कि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को पहले लॉन्च किया जाए, लेकिन जो मेकर्स हैं यशराज जो फिल्म्स हैं उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है कि नहीं नहीं हम तो थिएटर वाली रिलीज ही करेंगे। एंड आलिया भट्ट ने जेन्युइनली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे टीजर देखने के बाद खटक रही है वो है हरियाणवी। बॉबी देओल ने हरियाणवी बहुत गलत बोली है। किसी भी अच्छे हरियाणवी राइटर को जो है आप ला सकते थे और उसे लिखवा सकते थे स्क्रिप्ट, लेकिन नहीं, इतने अच्छे एक्टर से इतनी गंदी डायलॉग डिलीवरी मैंने तो एक्सेप्ट नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड अगर मैं पिछले कुछ मूवीज से एक पैटर्न देखूँ तो काफ़ी सारे एक्टर से हरियाणवी बुलवाने की कोशिश की जाती है लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। खैर कुछ फ्रेश आइडिया जो है बॉलीवुड लेकर आए, मैं बस यही चाहती हूँ। अल्फा जो है वो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग काम करे, मैं बस यही चाहती हूँ, स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाए। और इसी के साथ एक फ्रेश गाना जो है वो मैं आपको सुना रही हूँ।
1: रेडियो

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: पति पत्नी और वो दो मूवी से, ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय कीजिए और वादे के अनुसार थोड़ी सी देर में ऑलिव अपडेट में दिन की सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। सो ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: गाड़ी के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

नाच देखो इस वक्त वो लोग रहे हैं जो लोग अपनी मम्मी के फॉरवर्डेड मैसेज से परेशान है, या फैमिली ग्रुप में वो जो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, उससे काफी परेशान है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जितने भी मेरे वो दोस्त हैं, मेरे वो यार हैं जो परेशान थे फैमिली ग्रुप में उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, उनके लिए खबर आने वाली है। सो कई बार हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसका नाता जो है वो हमसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना होता है कि यार ये फॉरवर्ड होना कहाँ से शुरू हुआ है एंड ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहाँ से निकली है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए व्हाट्सएप जो है इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, इस फीचर पर काम कर रहा है, जहां पर अगर कोई मैसेज जो है वो बहुत बार फॉरवर्ड हुआ है, सो वो फॉरवर्ड होना कहां से शुरू हुआ था वो आपको पता चल जाएगा, यानी उस मैसेज का ओरिजिन जो है वो आपको पता चल जाएगा, उनका नाम और नंबर आपको पता चल जाएगा। अब ये प्राइवेसी के लिए कहां तक सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है कि ये जो फीचर है जल्द ही लॉन्च करेंगे, सो आई डोंट नो, मे बी ये काम का हो एंड इसके बाद जो है हमारे रिलेटिव्स जो है वो कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले चार बार सोचे, लेकिन अब दिल जो है वो फॉरवर्डेड मैसेज पे लग जाता है तो लग जाता है, और हम तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट वाली जनरेशन है। फिलहाल हमने वही लगाया दिल गाना पति पत्नी और वो दो से आराम की रेडियो सेट्स पर, इसे सुनते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:09 यानी 11:09।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
7: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: मैं भी बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग यही गए। कशिश आदत हो चुकी यार तेरी। तो देरी किस बात की है यार, आखे कह दो जरा कि मेरी आदत हो गई आपको। और कहाँ कहोगे, व्हाट्सएप पे कहोगे ना यार। 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आइए जल्दी से मुझे बताइए कि आपको मेरी कितनी आदत हो चुकी है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड 3311063 काफी लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आप नंबर बोल देती हैं कशिश, तो थोड़ा आराम से बोलिए। इसलिए 3311063 ये है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर, इस पर आकर हम बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं। आपका दिन कैसा जा रहा है, आगे वीकेंड जो है वो दस्तक देने वाला है बस हमारे दरवाजों पे, तो उसका क्या प्लान है और किस हिसाब से जो है आपका काम वाम चल रहा है, हफ्ता कैसा गया, ये सब बता सकते हो आप मुझे 3311063 पर। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपको आइसक्रीम कौन सी पसंद है। एग्जैक्टली ओए होए वाली बात मैं आपको कर बताने वाली हूँ। अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम खाने के शौकीन है तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो आपका स्ट्रेस 10% तक कम कर सकता है। हाँ जी, सो इस मौसम में आइसक्रीम इज द बेस्ट सोल्यूशन अपने स्ट्रेस से जो है वो लड़ने के लिए, गर्मी से लड़ने के लिए, अपने मूड स्विंग से लड़ने के लिए। तो देखिए आइसक्रीम जो है वो आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है, आइसक्रीम जो है उससे आप बेहतर फील करने लग जाते हो, एंड 10% आपका स्ट्रेस जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे खिसक जाता है। यानी अगर आप किसी भी बात का स्ट्रेस हो तो आइसक्रीम खा लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑफिस में जो है अब अपने फ्रिज में आइसक्रीम रखनी पड़ेगी, ताकि जैसे ही मीटिंग का नाम कोई ले तो मैं जल्दी से जाऊँ और एक आइसक्रीम खा के आ जाऊँ। अगर आपके घर में भी स्ट्रेस चल रहा है तो चॉकलेट आइसक्रीम जो है आज ले जाना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन अगर आपने काम ज्यादा खराब कर दिया है देखो, तो आपको तो चॉकलेट आइसक्रीम भी नहीं बचा सकती, सिर्फ मीका सिंह के गाने बचा सकते हैं। सो आज हैप्पी वाला बर्थडे विश करते हुए मीका सिंह जी को उनके अमेजिंग वाले गाने।
1: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए।
2: सावन में लग गई आग दिल मेरा।
1: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका। और नाम है पाजी का मीका। रेडियो ऑलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे।
0: तो जी गाने का नाम है ताकी ताकी, मीका सिंह की आवाज में, हिम्मत वाला मूवी से। अब ये गाना एंजॉय करके आइए, जरा वाइब करके आइए, आकर जरा एक मूवी रिकमेंड करूंगी मैं आपको। सुबह से गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कह दे रहा हूं जियो बिंदास।

0: पानी तो टिप टिप करके नहीं बरस रहा है, पसीना जरूर कह सकते हैं कि वो थोड़ा टिप टिप हो रहा है, पर ऐसी जगह जहां रोड्स पे भी एसी लगा हो, पार्क में एसी लगा हो, वहां ज्यादा मौके मिलते नहीं पसीने को भी बहने के। मैं तो जिम गई थी पैसे देकर पसीना बहाने के लिए, लेकिन वहां पर भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हां जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड वादे के अनुसार, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करने वाली हूं, क्योंकि वीकेंड जो है वो भी आ ही रहा है, सो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना देखने के लिए। अगर आपने पूरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे सब कुछ देख लिया है तो कुछ अमेजिंग हटके मैं आपको जो है बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैसेजेस पढ़ लेते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी वाले जो है मैसेजेस किए हैं, सबने हाय हेलो किया है। लेकिन मुझे जो है एक मैसेज आया है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे ये कहा था कि यार चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो आपके मूड को काफ़ी रिफ्रेश कर देता है एंड आपके स्ट्रेस लेवल को 10% कम कर देता है। सो मुझे जो है काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आया और सर ने मुझे ये कहा है कि देखिए सर, मैं तो नहीं खा सकता क्योंकि मुझे जो है एलर्जी है ठंडी चीज़ों से, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से खाते हैं। तो सर मेरा बस आपको एक यही सजेशन है कि मैडम के लिए अगर आप आइसक्रीम ले जाएंगे तो आपको आइसक्रीम खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मैम खुश है तो आपके पास स्ट्रेस का तो रीज़न ही नहीं है ना। क्योंकि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ऐसा लगता है लड़कों को सिर्फ इस बात का होता है कि जो उनकी पार्टनर है वो उनसे खफा है या उनसे डिसअपॉइंटेड है या किसी भी तरह बस उनसे नाराज़ है। डिसअग्री आप देखो कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कों के लाइफ का आधा स्ट्रेस सिर्फ इस बात पे है कि यार मेरी पार्टनर मुझसे नाराज है, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नाराज है। इन्हीं की कोई ना कोई हरकत होती है जिस वजह से लड़कियां नाराज हो जाती हैं। खैर अपनी जिस बात पे अपना जो है एक्सपर्टीज नहीं है उस पर बात ना करते हुए जिस चीज में एक्सपर्टीज है वो कर लेते हैं। सो आपको जो है मैं एक अमेजिंग वाली मूवी रिकमेंड करने के लिए आ चुकी हूँ। मूवी का नाम है आंखों देखी। ये 2014 की मूवी है जिसमें रजत कपूर आपको देखने को मिलेंगे एंड ये ना एक मिडिल एज्ड आदमी की स्टोरी है। इसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, लेकिन ये स्टोरी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़रा हटके है। बिकॉज इस मूवी में जो है ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, ये डिसाइड करता है कि ये हर उस चीज़ पे भरोसा करेगा जो सिर्फ इसने अपनी आंखों से देखी है, ना कि किसी बुक्स में जो लिखी गई है या फिर किसी न्यूज़ चैनल पर देखी है या किसी साइंस की स्टोरी में इसने पढ़ी है। ये उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर यकीन करेगा जो इन्होंने आंखों से देखी है। अब देखिए धीरे धीरे पूरी फैमिली जो है वो किस तरीके से हिल जाती है इनकी हरकतों से, उस पर ये स्टोरी बेस्ड है। आप अगर चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, मैं ये बता दूंगी कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी। वैसे अगर 10 में से मुझे इसे स्कोर करना हो तो मैं सॉलिड 8.1 इसे जो है स्कोर करूंगी, लेकिन एक मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आप वो इंसान हैं जिन्हें जो है स्लो मूवीज अच्छी नहीं लगती हैं, जो जिनमें पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, तो ये मूवी शायद आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी मूवी है वो मैं आके कल बताऊंगी। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आपके लिए आ रहा है
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the hour.
2: ये गाना,
0: गाने का नाम खासियत, मूवी का नाम चांद मेरा दिल। ये गाना एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक rewarding experience.
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
0: Lulu Stores पर हर spend के साथ मिल सकता है up to 5% savings. Lulu Points के form में.
1: Plus, enjoy कीजिए Airport Lounge Access, MyBook Offers, Dining Deals और Lifestyle Privileges. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर minimum कतरी रियाल एक spend कीजिए और rewards का मजा लीजिए.
0: Offer valid till 30th June 2026. Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: की आवाज में जालिमा मुंह। रईस मूवी का ये ट्रैक है, शाहरुख खान की एक बहुत ही बढ़िया मूवी। एंड यार बॉलीवुड की बात करें और मतलब शाहरुख की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड वक्त हो रहा है इस वक्त हो रहा है कैसी बातें करने लग गई हूँ यार कशिश। शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं किसी से मिलवाने के लिए आपको, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। सो 12:06 इस वक्त हो रहा है, यानी 12:06 हमारी स्टूडियो की क्लॉक में। एंड एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति से जो है बातचीत हम करने वाले हैं, सो क्यों ना इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं से जान लें।
1: हाय एवरीवन, मेरा नाम उरुष खान है और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: Yes, so इनके साथ जियो बिंदास बोलते हुए एक अमेजिंग वाली शुरुआत जो है वो हम करने वाले हैं बातचीत की। सो उरुज, वैसे तो आपको बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरीके से बॉलीवुड में जो है आपने जर्नी अपनी शुरू करी, क्योंकि हम कुछ भी कह लें, मॉडल कह लें इन्हें, हम एक मेकअप आर्टिस्ट कह लें, एक्ट्रेस कह लें इन्हें, पैजेंट विनर कह लें, जो भी कहेंगे वो इनके लिए कम ही होगा। सो रूज, किस तरीके से आपने बॉलीवुड में एंट्री जो है वो मारी एंड किस तरीके से फिल्मों में आपकी एंट्री हुई?
1: वेल, एक्टिंग में एंट्री ऐसी हुई थी कि जब मैंने पैजेंट जीता था, आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम कास्टिंग एंड you know, because it was there all over in the news, and then you know the media, they approach you for the projects. So I hired a manager, and he was ex-manager of Rajesh Khanna. So and then we had certain meetings, and I gave some auditions, few auditions, and then that's how we cracked the project.
0: Yes, और ऑडिशन में देखो सबका नहीं होता है, जो लोग अच्छा काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को ऑडिशन में सिलेक्ट किया जाता है हजारों लाखों की भीड़ में से। एंड उरुज, आपके टैलेंट पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी बातचीत अभी हम जारी रखेंगे उरुज खान के साथ, और कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो है वो उरुज के हमें देखने को मिलने वाले हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन एक अमेजिंग वाले गाने के उस पर। उरुज के साथ बातचीत करने में मजा तो आ रहा है, बस इसीलिए क्यों मजा आ रहा है गाने का नाम है विशाल मिश्रा की आवाज में। एंजॉय कीजिए, कहते रहिए जियो बिंदास

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:11 यानी 12:11।
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
4: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर, दिस इज शाहरुख खान।
5: हाय, दिस इज अजय देवगन।
6: हाय, दिस इज अक्षय कुमार।
7: हाय, दिस इज अनुष्का शर्मा।
8: एंड आई एम अशोक वासनी।
9: दिस इज रणवीर सिंह। स्टे ट्यून्ड।

0: अब अरिजीत सिंह जी इतने प्यार से अगर कह रहे हैं कि मुझसे बेहतर और कोई है ही नहीं, तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ. जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि क्या क्वालिटी नहीं है इनमें. ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये मॉडल है, ये एक्ट्रेस है, इन्होंने सीरीज की है, ये मूवीज करने वाली है, ये ब्यूटी पेजेंट विनर है. ओ माई गॉड. सो उरूज खान जी के साथ इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं एंड इनकी नई नवेली सीरीज जिसका सेकेंड सीजन जो है वो आप अभी देख सकते हैं, वो जो है लॉन्च हो रहा है. सो उस पर हम बातचीत कर रहे हैं. सो अगर मैं बात करूँ उरूज, सो किस तरीके से जो है ये सेकेंड सीजन आपको लगा है एंड किस तरीके से आप एक्साइटेड हो इस सेकेंड सीजन के लिए? एंड सबसे पहले तो हम आपके कैरेक्टर की बात करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक ये जो सीरीज है वो नहीं देखी है.
1: मेरा कैरेक्टर है ममता कुमारी. आई एम प्लेइंग एसटीएफ टीम मेंबर जो स्पेशल टास्क फोर्स है. और ऑब्वियसली इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल माय को एक्टर्स. सो इंस्पेक्टर अविनाश इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. ही हेज फ्रॉम लखनऊ. सो ही हैज डन मोर देन आई थिंक 150 एनकाउंटर्स. तो उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है. तो किस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं सिस्टम को लेके, अपनों को लेके, मतलब अपने ही उनके कुछ टीम मेंबर्स थे जो उनको बिट्रे कर रहे थे, तो उन प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए भी कैसे क्राइम को हटाना है, लोगों को जस्टिस पहुंचानी है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज. प्लीज गाइज गो एंड वॉच इट योर सेल्फ. एंड प्लीज आप लोगों का बहुत सारा प्यार दीजिए इस प्री सीरीज को. एंड एक्सेप्ट मी एज ममता कुमारी.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं सब ममता कुमारी के रोल में. एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लग रही है ये मूवी, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी. सो किस तरीके का रिएक्शन जो है वो मिल रहा है एंड कितने एक्साइटेड हो और ज्यादा लोगों को जो है ये देख कर और ज्यादा लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए?
1: सेकेंड सीजन इज मोर हिट देन सीजन वन, जो कि हम लोगों को मतलब जो जितना प्यार मिल रहा है ना, आई कांट टेल यू द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग. और मैं अक्सर मैं बहुत जल्दी वो एक वीडियो यू नो एक थैंकफुल वीडियो डालना चाहूँगी डालूँगी फॉरन, क्योंकि यू हैव नो आइडिया हाउ माई डी एम्स माई सोशल मीडिया
2: इज फ्लडेड
1: फ्लडेड इतना प्यार. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि चलो ठीक है, यू नो एटलीस्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग यू, पीपल आर गिविंग सो मच ऑफ लव फॉर योर वर्क, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग यू नो. तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ को लेके. एंड यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो सो.
2: ओके
0: बिल्कुल जी. सो वो वीडियो भी हम देखेंगे और हमारा जो वीडियो है मेरे और उरूज की बातचीत जो हमने एक्सक्लूसिवली की है उसका वीडियो भी जल्द ही आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं. तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, जल्दी से देखिए. एंड उरूज के साथ और बातचीत जो है वो हम जारी रखने वाले हैं, लेकिन पहले कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

गाने का नाम ही इतना फन वाला है कि मैं क्या बोलूं, ओ मेरी मुन्नी। गाने का नाम एंजॉय कीजिए, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, कहते रहिए जो बेदार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: बेचैन तो देखो मैं हो ही जाती हूँ, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो है वो इस मौसम में मुझे पहने नहीं जाते। केयर नॉट सो एस्थेटिक बातें करते हुए सबसे एस्थेटिक इंसान के सामने मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्ता लेकर आ गई हूँ। एंड उरूज खान जी के साथ बातचीत जो है हम कर रहे हैं, इनकी नई नवेली सीरीज जो है वो इस वक्त लॉन्च हुई है, उसका सीजन 2 लॉन्च हुआ है इंस्पेक्टर अविनाश नाम से। सो उरूज बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे आपने बताया आपकी डीएम जो है वो एकदम भर चुके हैं लोगों की तारीफों से, तालियों से। सो अब आगे का क्या प्लान है, क्या कुछ प्लान करके रखा है कि कौन से नए प्रोजेक्ट जो है वो करने हैं?
1: तो अब यस, आई हैव कपल ऑफ माई प्रोजेक्ट्स व्हिच आई done and two projects jo hai on floor hain. Another project which I'm talking about which will we will be going on floor next month, mid of June.
0: तो मिड ऑफ जून वो तो आने वाला है, देखो आ ही गया है लगभग। अब देखते हैं क्या कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो उरूज के हैं। सो आप जो है उरूज को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उरूज और मेरी बातचीत को जो है देखने के लिए आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक अमेजिंग गाना आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम वही है जो मम्मी अक्सर हमें कहती है, हमारा अल्तमश फरीदी की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय करके आओ और कहते रहो जरा जियो बिंदास।

0: गाना सुनने के बाद ना ऐसे सरसराहट सी हो जाती है बॉडी में, इतना अच्छा गाना ये। अतरंगी ने मूवी का ट्राई किया अरिजीत सिंह की आवाज में, या आपने एंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, शो लाइफ मस्त है। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे अभी तक, हम उरूज खान जी से भी बात कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। आई नो आपको काफी सारा दुख हो रहा होगा, काफी बुरा लग रहा होगा कि कशिश मत जाओ हमें छोड़कर, हमारे एंटरटेनमेंट का क्या होगा, लेकिन बैक टू बैक गाने आपके लिए आ रहे हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है मेरी दोस्त, मेरे यार, आप जो है इंजॉय कीजिए इन गानों को। कल मैं लौट के वापस आ जाऊंगी ना, अभी आपके लिए जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना वो मैंने लगा रखा है, ऑल ए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, सो इसे इंजॉय कीजिए। बाकी मैं जो कहती हूँ मैं वही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाने सुनते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और मुझे ना याद करते रहिएगा। 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जो है आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर आपको मैं भी मिल जाऊंगी। फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना इंजॉय करो
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the hour. ये
0: गाने का नाम लिपस्टिक लगा के, अदनान सामी जी की आवाज में। एंजॉय करो, कहते रहो जियो बिंदास, चाचा बाय बाय।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
4: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।
3: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए।
4: सावन में लग गई आग दिल मेरा।
3: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका। और नाम है पाजी का मीका। रेडियो ओलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
0: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ। मॉर्निंग्स एंड

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तनिषा
1: नबील चौगत अली साहब की आवाज में बहुत सुंदर गाना बेवजह ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम तनिषा के साथ सुना आपने ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान क्या हाल चाल है वेंसडे का दिन जून 10th कैसा ट्वीट कर रहा है आपको व्हाट्स द मूड एंड द वाइब ऑफ द डे ये जानना चाहूंगी बाहर क्रेजी गर्मी हो रही है थोड़ी देर पहले मैं निकली थी और अब मेरा आधा सिर दर्द दे रहा है लेकिन अब यहाँ पे सब बढ़िया हो जाएगा क्योंकि आपसे बात करने आ गई हूँ मस्त गाने गाने सुनो जरा आप
2: लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे
1: ओए होए अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत और फिर अमरिंदर गिल भी है लाइन में
3: माते लिखिया नाले वेखो नाले चुम्मा मैं मेरी सुरत पुलाती तेरे ना दे अखर ने
1: बड़ा ही सुंदर गाता है यार ये इंसान इतनी प्यारी आवाज है ना इनकी और फिर थोड़ा पीछे चले गए नॉस्टैल्जिया में और सुनेंगे
4: अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली
1: पिकता साला एंड लॉन्ग विद दैट कुमार सानू साहब भी इंतजार कर रहे हैं
5: दो दिल मिल रहे हैं मगर
1: परदेश मूवी से और भी बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक्स लाइंड अप हैं इस पूरे घंटे में ढेर सारी बातें भी करने वाले हैं हम लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए कैसे हैं क्या कर रहे हैं लंच वंच हुआ कि नहीं कहां से सुन रहे हैं सब जानना चाहूंगी कॉल भी कर सकते हो बाय द वे 4444 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: मैं हूँ सारिका।
0: आप मुझे सुन रहे हैं
3: रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में मेट्रो इंद्रों से कायदे से बड़ा प्यारा गाना है और जिस तरह से अरिजीत सिंह ने गाया है ओहो एकदम एफर्टलेस एकदम स्मूथ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं आप पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनो आप ही के लिए ये जी योर लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ फेरेरो रोशेस। अगर आपको फेरेरो नहीं पसंद है कोई और चॉकलेट पसंद है तो वो कंसिडर कर लो ठीक है। योर लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ फेरेरो रोशेस तो ये मेलोडी जैसे लोगों को ना अपनी जिंदगी को इसे रुइन करने मत दो ठीक है। बाउंड्रीज मेंटेन करो मेरी जान बहुत जरूरी है आज के जमाने में बाउंड्रीज मेंटेन करना बिकॉज कई लोगों को जब तक आप ये रियलाइज नहीं करवाओगे ना कि बस इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते इसके आगे आप मुझसे और उल्टी बात नहीं कर सकते या फिर यू नो यू कैन नॉट बी रूड टू मी एनी मोर वो समझेंगे कि अरे इसको तो सब चलता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करी है एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट दिस इज द टाइम दिस इज द रिमाइंडर फॉर यू मेंटेन ड्रॉ द लाइन बाउंड्रीज बनाइए जरूरी है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। जी हाँ फिलहाल सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर अमरिंदर गिल की आवाज में आखिर स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: हेमा सरदेसाई और शाहरुख खान की आवाज में जोश मूवी से अपुन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता है साला कन्विक्शन के साथ नहीं बोल रहे होगे ना यार इसलिए उसको लगा कि फेंक रहे हो थोड़ा कन्विक्शन के साथ प्रैक्टिस करके बोलो जी हाँ यार 106.3 FM तनिषा के साथ ऑल रिचार्ज चल रहे हैं आप और भाई देखो क्रेजी वाला वेदर हो रखा है अभी बहुत भयंकर गर्मी हो रही है आई कीप रिमाइंडिंग यू यू नो स्टे हाइड्रेटेड लाइट खाना खाइए फ्रूट्स खाइए जिसमें वाटर कंटेन है और यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पानी वगैरह बाहर निकल रहे हैं तो साथ लेकर चलें बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद दैट अब वीकेंड्स के प्लान बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो बहुत सारे जो वाटर पार्क्स हैं उसमें बढ़िया बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं चेकआउट कीजिए और वीकेंड भी आ रहा है तो यू नो फैमिली फ्रेंड्स बच्चों को लेकर जाइए और बड़े ऐसा टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए अभी जो मरियल वाटर पार्क है वहाँ पर समर स्प्लैश लॉन्च हुआ है और स्पंज बॉब एंड पॉ पेट्रोल का फुल एक्टिवेशन इज देयर बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा आपने वीडियो देखी होगी कशिश वेन देयर टू चेक इट आउट फॉर यू एंड उसे भी बहुत मज़ा आया सो इस वीकेंड अगर आप सोच रहे थे कि क्या करना है ये कर सकते हैं चेकआउट कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

0: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
1: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए।
2: ओ, सावन में लग गई आग दिल मेरा।
1: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका। और नाम है पाजी का मीका। रेडियो ऑलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे।

0: मीका बाजी का बर्थडे स्पेशल गाना, सावन में लग गई आग, तो बहुत सही बात है, आग ही लगी पड़ी है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने एक बहुत अमेजिंग चीज की है, जो कि पहली बार हुई है इन द हिस्ट्री। सो कतर फुटबॉल एसोसिएशन हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्चुअल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, सो उन्होंने ड्यूरिंग द मैच बिटवीन कतर एंड आयरलैंड, जो कि डबलिन में हो रहा था, उसके टाइम पर इसे डिप्लॉय किया एंड बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। इट वॉज रियली अमेजिंग। और अभी जो है ना, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और इंगेजमेंट है फैंस के लिए, इनिशिएटिव्स जो है वो और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल एडवर्टाइजिंग थिंग। और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट, कल से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। Who is excited? कौन सी टीम के लिए रूट कर रहे हैं, कौन से मैच का वेट कर रहे हैं, बताएं मुझे 3311063 पर। And stay tuned to Radio Olive, Jio Bindas.
1: Radio Olive पर.
2: Fresh. ये गाना fresh है.
1: Fresh song of the hour.
2: ये गाना

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और Doha Bank and Lulu has brought something really amazing for you. अब आपका shopping experience जो है और भी ज्यादा rewarding हो जाएगा. जी, all you have to do is apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card and you can get 500 रियाल तक के Lulu shopping vouchers. Not just that, Lulu stores पर जब भी आप spend करेंगे तो आपको 5% savings भी मिलेंगी Lulu points के form में. और साथ ही you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और बहुत सारे lifestyle privileges भी. तो देर किस बात की है, तो जल्दी से जाइए, apply कीजिए, get your card activated and Lulu पर minimum 1 रियाल spend करो बस और फिर rewards का फायदा उठाओ. This offer is valid till 30th June only. तो जल्दी जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Card and stay tuned to Radio Olive Trio Bindas.
0: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu MasterCard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Mascara suna aapne Nilanjana Ghosh ki awaaz mein. Main wapas aaunga movie se, jaldi release hone wali hai. I'm excited about this one, yaar. Badhiya lag rahi hai. Well, Olive Recharge bhi waqt ho chuka hai.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: तो आज जो मैं डिक्शनरी से वर्ड लेकर आई हूँ वो बहुत सुंदर है और इस चीज़ का रियलाइजेशन हमें हर थोड़े दिन में और मे बी हर रोज ही होता है बिकॉज वी सी पीपल अराउंड अस एंड हमें हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब तो पता होता है. मे बी हमारे बेस्ट फ्रेंड के हमारे पार्टनर की लाइफ का भी पता होगा समवॉट, लेकिन रैंडम स्ट्रेंजर्स यू मीट और यू नो अक्वेंटेंसेज या फिर ऑफिस में जो आपके कॉलीग्स हैं सबके बारे में सब कुछ तो नहीं पता होता है. द मोमेंट यू रियलाइज कि यार जैसे मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे इनकी लाइफ में भी तो चल रहा होगा ना. दैट रियलाइजेशन एंड इट हम्बल्स यू लाइक एनीथिंग. यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल बिकॉज दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फ, राइट? और जब आपको ये रियलाइज होता है कि यार इनकी लाइफ में भी तो कुछ चल रहा होगा, यू बिकम एम्पैथेटिक फॉर देम ऑल्सो. एंड दैट फीलिंग, दैट रियलाइजेशन इज कॉल्ड सॉन्डर. S-O-N-D-E-R. And that is such a beautiful part of being a human. So you're doing a great job, Meri Chan. Sending a beautiful track your way. Stay tuned and you're with us.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में ही रंजना ऑल ऑन रेडियो 106.3 एफएम ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं अबर और आज वैकी विजडम में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की. बाय द वे आज आई वाज यूजिंग जेमिनी फॉर समथिंग यू नो मैं किसी चीज में स्टक हो गई थी. आई वाज ट्राइंग टू मेक अ पोस्टर एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी हेल्प लेती हूँ एंड इतना स्टूपिड मुझे ये रियलाइज हुआ वो यूज करते करते कि भाई बहुत स्टूपिड है ये. जी हाँ इट्स जस्ट वो हमें बहुत इंस्टेंटली जवाब दे देता है हमारी हर चीज़ पे अग्री कर जाता है. आपने कभी भी किसी भी यू नो दिस एआई प्लेटफॉर्म पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो भले ही वो कितना भी नेगेटिव हो उसने पॉजिटिव ही जवाब दिया है. नोट कीजिएगा ये चीज़ आपको वो हर सिनारियो में हीरो ही बना देता है. सो चापलूसी करने के लिए तो फुल्ली ट्रेन किया गया है उसे. अलॉन्ग विद दैट इट इज़ यूजिंग ऑल ऑफ आर वाटर. यस चैट जीपीटी जो है सैम ऑल्टमैन जो इसके फाउंडर है उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी हमारा ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर फ्रेश वाटर यूज करता है हर रोज क्योंकि इतने सारे यू नो कैलकुलेशंस और रिस्पॉन्सेज वो जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी मशीन्स लगी और उन मशीन्स को कूल करने के लिए देयर इज अ फैसिलिटी जहाँ पर वाटर मशीन्स के ऊपर रहता है सो दैट वो कूल डाउन रहे और उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वाटर यूज़ किया जा रहा है ना यू कैन नॉट इवन इमेजिन. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से थोड़ा कम यूज़ करना शुरू करो इसको बिकॉज हर चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करें और ये हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहा है खुद के ऊपर. कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है यार. सो स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ मेरी जान. सेंडिंग मीका सिंह का स्पेशल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास.
2: आवाज का जादू ऐसा कि सावन में भी आग लग जाए.
3: सावन में लग गई आग दिल मेरा.
2: अपने स्टाइल से हम सबका दिल जीता और हम करने लगे ढिंका छिका. और नाम है पाजी का मीका. रेडियो ऑलिव की तरफ से मीका पाजी को हैप्पी बर्थडे.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
1: Lame jams.
0: Ka aaj ka mera sawal hai ki agar sarson ka tel do din purana ho jaye to usse kya kahenge? सरसों का तेल दो दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पुराना तेल नहीं कहेंगे, ठीक है? आप लेम जवाब दो मुझे 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. अगर सरसों का तेल दो दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? और सुन रही है रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम पर ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और लेम जैम्स में मैंने सवाल पूछा था आपसे सरसों का तेल अगर दो दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहेंगे और मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया गया है मुझे यहाँ पे इतने सारे जवाब आए हैं मैं स्क्रॉल करते करते थक गई हूँ और सबने करेक्ट जवाब दिया है जी हाँ सो आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू नो मासूम फैजल ओनिल दानिश और किसी के ABCD लिखा हुआ है नाम पे वाओ नाम लिख दिया करो यार अपना और मोहम्मद एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर देयर थैंक यू सो मच जिन सब ने भी मैसेज किया है एंड सबका जवाब एकदम करेक्ट है यस द करेक्ट आंसर इज परसों का तेल थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस मेरी जान दिन बना देते हो आप मेरा सच्ची इसी बात पे एक बढ़िया गाना हुक्कावार भेज रही हूँ आपके लिए वाइब करेंगे दोनों मिलके आप उधर मैं इधर हिमेश रेशमिया की आवाज में खिलाड़ी 786 से स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास

0: इकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
3: अब लेर लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है

0: अरमान मलिक, अरमान
1: मलिक,
2: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तनिषा
1: जाना तो देखो पड़ता है और जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। Y'all listening to Radio Olive 106.3 FM, तनिषा आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे नहीं जाने का। अब आपने बोला है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बात खत्म। हम अभी और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, फिलहाल आप सुनिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि ढेर सारा पानी पीते रहिए, वेदर थोड़ा सा अजीब ही हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। आप जैसे ही बाहर निकलोगे दिन में स्पेशली सिर दर्द होने लग जाता है एंड सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए। अच्छा खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए बहुत सारे जिसमें वाटर कंटेन हो और जो समर स्पेशल होते हैं, और बस स्वस्थ रहो मस्त रहो मेरी जान। कुछ ही देर में लौट कर आऊंगी और सुदेव को अपने साथ लेकर आऊंगी। जी हाँ, संतरे ये रेडियो ऑल है, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha आपके साथ और
1: मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव जी. आज सुबह भी मैं, शाम को भी मैं.
0: Oh my God, गिर गए हैं हम सुदेव के ऑरा से.
1: कहाँ गिर गए? उठाने के लिए
0: गिर गए.
1: अच्छा, गिर गए,
0: सराउंड हो गए.
1: मुझे गिर गए, मैं सोचा और कितना गिरोगे. क्या बोला?
0: रुको बैठे, तुम्हें मैं बताती हूँ.
1: अच्छा, ठीक है ठीक है. फिलहाल यहाँ पे आप गाने सुनिए, मैं तनिषा की बात सुनता हूँ.
0: हाँ जी, सेंडिंग धीमे धीमे
1: धीमे
0: फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो.
1: क्या बात है.
0: स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास
1: मेरी जान.

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alcohol.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लमर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
4: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
4: Offer valid till 30th June 2026. Doha Bank, Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOD with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
7: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव. राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
8: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
9: Radio Olive, I'm a number one.
10: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग.
9: जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई,
10: सिर्फ रेडियो ऑलिव पर.
9: जबरदस्त इवनिंग
10: जियो बिंदास.
11: Zabardast Evening. Zabardast Evening. Make you drive golden with.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सुनिधि चौहान की आवाज में खाकी मूवी से ऐसा जादू डाला रहे ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। जबरदस्त इवनिंग चल रहा है सुदेव और तनीषा के साथ।
1: ऐसा जादू डाला सुनिधि की आवाज ने हम सबके दिल में, मगर मैं कहना चाहता हूँ ऐसा जादू तनीषा ने डाला है अपनी इंग्लिश से, अपने ऑरा से, अपने एटीट्यूड से, अपने पर्सनालिटी से।
0: सही बात है
1: कि हम सब भाई बहन हो गए हैं।
0: क्या हो गया, मैंने तो पैसे दिए नहीं ना, मैं आगे देने वाली हूँ, क्यों कर रही है?
1: दे दो ना, इसलिए तो बोला देने के लिए तो बोला मैंने
0: नहीं हो पाएगा।
1: क्यों नहीं हो पाएगा?
0: Nope.
1: अच्छा थोड़ी पंजाबी गल कर लेते हैं।
0: वाई
1: अरे कर लेते हैं,
0: मलयालम में करते हैं ना।
1: चलो बोलो
0: सुगमानो
1: सुगमानो सुगमानो तुसी दसी की हाल
0: ये जो इंटरचेंज हुआ है मुझे ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा डाइजीन पी लो फिर
0: सो लेम, मेरे लेम जाम्स इससे बेटर होते हैं। बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, आज का सवाल
1: नहीं पूछना।
0: नहीं
1: आपके लेम जाम्स के कारण ही ऐसा हो गया मैं।
0: सो आज का क्वेश्चन है,
1: हाँ पूछो,
0: था मतलब कि अगर सरसों का तेल दो दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहेंगे?
1: परसों का तेल, संगत का असर कहते हैं दोस्तों इसे। मैं इतना बढ़िया बंदा था, अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि मेरा लेवल इतना गिर गया।
0: उठ गया बेटा।
1: आप स्केल उल्टा देख रहे हो,
0: आपकी आपको परसेप्शन ही गलत है ना।
1: अच्छा,
0: आप ठीक तरीके से देख नहीं रहे हो, आपकी लेंस चेंज करनी पड़ेगी।
1: अच्छा मैडम, मेरा लेंस चेंज करना पड़ेगा, आपका परसेप्शन ही चेंज करना पड़ेगा।
0: ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में लड़ाई करेंगे। फिलहाल भेजते हैं अरिजीत सिंह और तोची रैना की आवाज में खलबली।
1: खलबली
0: Stay tuned and Trio Bindas.
1: Meri Jaan.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on TOT with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Rangi Sari Zuna Apne Kanishk Seth aur Kavita Seth ke awaz mein from the movie Jug Jug Jio. Zabardast evenings chal rahe hain yahan pe Dinesh aur Sudeep ke saath hain aap.
1: Aur yahan pe main actually kuch bolne wala tha.
0: Pause ho gaya tha
1: Sudeep. But main pause ho gaya tha, ise buffer karne lag gaya tha ekdam se. Yaar Tanisha, kal se jo hai bahut hi bada ek festival shuru hone wala hai. एक ही दिन या कुछ घंटे बचे हैं बस
0: exactly.
1: और फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है. आज सुबह जब इसके बारे में बात कर रहा था तो मुझे एक बहुत खास बात लगी. वो ये था कि हर जगह हर कोई जो है 2022 के कतर वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कतर ने उसे बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया था. इवन फीफा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि मेरा बस चले तो मैं अगले 10 वर्ल्ड कप भी कतर में ही कराऊं करके. और इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स यहाँ पे देखने को मिले लोगों को. और मैंने बताया भी था, मेरा एक फ्रेंड जो आया था यहाँ पे कवर करने के लिए आया था हमारे चैनल के लिए, उसने भी बोला बहुत बढ़िया था. और अभी बहुत सारे लोग जो हैं काफी नॉस्टैल्जिक मोड में रह रहे हैं. उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप देखा, कतर को होस्ट करते हुए देखा, एक हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बने सब लोग. तो आप लोग मुझे जरा 4 साल पीछे जाइए, बताइए वो वाइब कैसा था, वो एक माहौल कैसा था. हमें मैसेज कीजिए 3311063 पर. और इन चीजों के बारे में अगर आपके पुराने फोटोज स्टोरीज कुछ भी अगर आपके पास हैं आप उन्हें इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल सकते हैं, रेडियो ऑलिव को टैग कर दीजिए, हम रीशेयर कर देंगे.
0: हाँ जी, और एक बेंचमार्क तो कतर ने सेट कर ही दिया है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो.
1: यस,
0: नॉट जस्ट फीफा, ऑब्वियसली दैट वाज ऑन अनदर लेवल, बट कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो कतर से ज्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता.
1: बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने. इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल है तनिषा मैडम आपसे. दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय यू.
0: ओके,
1: सवाल यह है कि एक बेंचमार्क लगाने के लिए कितने बेंच लगाने पड़ते
0: हैं? Oh my God, I'm sending an amazing track for you guys. Enjoy कीजिए, सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: मेरी जान.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Arsudevi, आपके साथ जबरदस्त इवनिंग शो चल रहा है यहाँ पर.
2: एक जबरदस्त बात बताने के लिए तनीषा यहाँ पे पकड़ के लेकर आई मुझे. मैं जरा बाहर निकला था स्टूडियो से पानी पीने के लिए.
1: अलाउड नहीं है आप ऐसे कैसे बाहर निकल गए
2: भाई. जब तनीषा तनीषा मैडम के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो बोलिए मैडम.
1: हाँ तो बात सुने.
2: यस मैडम, प्लीज मैडम.
1: खुद के लिए
2: खुद के लिए
1: हमेशा बड़ा सोचिए. क्योंकि छोटा सोचने के लिए तो लोग हैं ही दुनिया में.
2: क्या बात कर दी मैडम आपने. मुझे लगता है
1: करेक्ट बात.
2: लाखों लोगों की दिल की बात आपने यहाँ पे छीन ली.
1: बाय गॉड.
2: और बहुत बढ़िया बात कर दी. मतलब ये एक बहुत ही प्रोफाउंड बात है. काफी अच्छे तरीके से तनीषा मैडम ने हमारे सामने रखा कि देखो यार, तुम्हें छोटा दिखाने के लिए, छोटा बोलने के लिए लोग तो मिलेंगे.
1: Obviously,
2: अपने बारे में बड़ा सोचो.
1: इफ यू हैव डन समथिंग गुड, मेक श्योर कि आप ही खुद को प्रेज कर लो. इंतजार मत करो लोगों का.
2: बिल्कुल.
1: क्योंकि वो तो यही कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे फ्लॉज निकाले जाए.
2: देखिए मैं यही बोलूंगा, जब घर पे अकेले हो, आपको भूख लगी, आप खाने का जुगाड़ खुद ही करोगे, है ना.
1: सारे एग्जाम्पल घूम फिर के खाने पे आ जाते हैं.
2: देखो बात तो वही है ना, इंसान तारीफ का भी भूखा ही होता है.
1: करेक्ट है.
2: सही बोला ना मैंने.
1: क्या घूम के आए हो बेटे.
2: बेटा घूमने में तो
1: कमाल कर दिया तुमने.
2: कमाल के इंसान है. बैक इन इंडिया मुझे कमाल और खान भी बोलते थे लोग.
1: नहीं सुदेव,
2: नहीं बोलते. एक्चुअली नहीं बोलते.
1: मत करो ऐसा, मत करो.
2: इसे कहते हैं दोस्तों संगत का असर. आप लोग लेन जेम्स दिन में एक बार सुनते हो.
1: मेरा तो डेफिनेटली नहीं.
2: मैं बार बार सुनता हूँ.
1: फिर अजनबी बन जाए.
2: है?
1: फिर अजनबी बन जाए.
2: गाना ना
1: जी.
2: हाँ बहुत प्यारा गाना.
1: जुनैद अहमद की आवाज में चांद मेरा दिल मूवी से.
2: क्या बात, क्या बात.
1: स्टे ट्यून्ड. एंड्रियो बिंदास
2: मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल बहार, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुख वाकिफ अलखोर।
5: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
6: जैकी श्रॉफ
5: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ओलिव नंबर वन।
8: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग,
9: जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई,
8: सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
9: जबरदस्त इवनिंग,
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
11: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
12: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: की कीमत बहुत महंगी है, इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट जो है पढ़ा है। तन्हाई की कीमत क्या है ये जानने से पहले आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है जबरदस्त इवनिंग्स, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है हंसती हुई खिलखिलाती हुई बरसों से मेरा मतलब प्री हिस्टोरिक एरा से अभी तक यहाँ पे बैठी हुई
1: तनीषा।
0: और तनीषा मैडम की हाल है?
1: वधिया तुसी दसो।
0: अरे हाल ते वधिया, बाकी पंजाबी नहीं आती।
1: सेम टू सेम।
0: अरे तनीषा ने एक बार एक पंजाबी एक स्पीच बोली थी, मैं और तनीषा और कशिश उबर में जा रहे थे और जो उबर चला रहे थे भैया वो खुद पीछे मुड़ के बोले पंजाबी की इतनी बुरी हालत क्यों कर रहे हैं आप लोग।
1: और वो भैया खुद पंजाबी भी नहीं थे,
0: वो पंजाबी थे।
1: No, he was from Rajasthan.
0: वो दूसरे वाले भैया थे, उन्होंने तो बोला भी नहीं, वो तो हंसना ही शुरू कर दिए थे सीधा। कोई बात नहीं, देखिए बात यह है कि हमने तन्हाई से शुरू की थी। तन्हाई यानी कि क्या? लोनलीनेस। इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में बहुत लोनली फील करता है या फिर एक सिचुएशन में आ जाता है जहां पे वो लोनली हो जाता है। मगर लोनलीनेस एक्चुअली बहुत ही हार्मफुल है, डैमेजिंग है
1: हमारी हेल्थ के लिए।
0: हमने अक्षय कुमार को एक बार एक एड में बोलते हुए सुना था कि समझदारी फूफू करने में नहीं है। जो लोग एक दिन में 15 बार फूफू करते हैं, जो डैमेज उनको होता है वही डैमेज आपको लोनलीनेस भी दे सकता है।
1: Exactly.
0: तो अकेलापन देखिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लोनलीनेस एक चीज है, सॉलिट्यूड एक अलग चीज।
1: ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है
0: जी, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर आप लोनली फील करते हैं तो प्लीज रीच आउट टू योर फ्रेंड और सीक मेडिकल हेल्प और प्रोफेशनल हेल्प
1: और कॉल कर दो 4444-1063 पर।
0: और यही बात बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास मेरी जान। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
3: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास। जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabak Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
4: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Baatein nahi.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Darish Aur Sudev ke saath hai aap zabardast evening show par.
1: Aur dekhiye dekhiye garmi ka ek mausam chal raha hai. Mausam is not mausuming
0: at all.
1: Bahut hame dikkat de raha hai. Subah subah jab bhi main mausam ke bare mein padhta hu, main hamesha ye darkhwast karta hu ki hawa jo hai hame thodi thandak de de.
0: कल आई वॉज टॉकिंग टू माई मासी एंड मैं उन्हें बता रही थी यू नो यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है. इवन एसी भी फील ही नहीं हो रहा है कि चल रहा है.
1: जी, जी, जी,
0: पसीने आ रहे हैं तब भी.
1: जी, जी.
0: तो वो मुझे बता रही है हम तो छत पे बैठे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही है. मुझे जलाने के लिए कॉल किया गया था
1: तो बोलो ना कि ऑलरेडी हवाएं जला रही है मुझे, आप अपनी बातों से और ना जलाएं. और यहाँ पे देखिए गर्मी को एंजॉय करने का भी तरीका होता है मुझे लगता है, ठीक है, हमें बस उसे फिगर आउट करना होता है.
0: राइट.
1: और उसके लिए आप जो है 19th जून को फ्राइडे सलवा बीच फेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं. वहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. आप जरूर चेकआउट कीजिए इसके बारे में. इसके बाकी डिटेल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपके टिकट चेकआउट कर सकते हैं. फिलहाल यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं
0: और बढ़िया सा गाना चलाते हैं आपके लिए. ओनली ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास
1: मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। टॉप पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केट campaigns, simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर।
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव. सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: आप सभी का एक और बार इस्तकबाल है, यह है जबरदस्त इवनिंग्स। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है एक बहुत महान हस्ती जिनके बारे में चर्चा करते हम थकते नहीं हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा यहां से लेके वहां तक होती है।
1: या डिजर्व करती हूं मैं
0: आपके बारे में बात।
1: मुझे पता था।
0: ठीक है, मैं महिमा चौधरी के बारे में बोलने वाला था।
1: How I know you, Sudev? How I know you?
0: You don't know me.
1: I know you very, very much.
0: You don't know anything, Jon Snow.
1: Oh, please.
0: Do you know Jon Snow?
1: Yes, I do.
0: How do you know Jon Snow?
1: Game of Thrones.
0: अच्छा अच्छा, Jon Snow क्या करता था?
1: Jon Snow कुछ नहीं करता था।
0: अरे ऐसा थोड़ा ना होता है,
1: क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था।
0: बिल्कुल सही बात है, समझ गए समझ गए। बट या गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, Jon Snow के दिल को क्या पसंद था? ग्रिट पसंद थी।
1: हाँ, बट हमें उससे क्या,
0: हमारे दिल को भी क्या क्या पसंद है हम जानते हैं, मगर हमारे दिल के लिए क्या क्या बुरा है कि क्या ही हम जानते हैं?
1: वो हम जानना ही नहीं चाहते, सोचा ही नहीं कभी।
0: सोचा है ये तुमने क्या,
1: अब
0: कभी?
1: सोचोगे,
0: अब हम बताते हैं ना, सोचोगे। हमारे दिल के लिए पोटैटो चिप्स आर नॉट गुड। दिल टूटता हुआ सुनाई दे रहा मुझे लोगों का यहाँ पे। हमारे स्टमक के लिए स्पाइसी फास्ट फूड इज नॉट गुड। हमारे ब्रेन के लिए एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट गुड। साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए चॉकलेट इन एक्सेस आर नॉट गुड। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जो शायद हम अननोइंगली नोइंगली थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। मॉडरेशन
1: एक्सेस में, सी एनीथिंग व्हिच इज इन कंट्रोल और मॉडरेशन में आप ले रहे हैं, इट इज गुड। जो भी एक्सेस में लिया जा रहा है वो हमें कहीं ना कहीं से हार्म करेगा।
0: एक ही चीज है जो आपको हार्म नहीं करती अगर आप वो एक्सेस में भी लो, That is music and exactly. We have something for you. गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जीवन दास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: You're listening to Radio All 106.3 FM, Tanisha आपके साथ, और मेरे साथ सुदेव भी है, भूल जाती हूँ यार मैं.
1: कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. यहाँ पे मतलब 5'11" की हाइट में यहाँ पे खड़ा हूँ मैं. तनिषा मैडम देख नहीं पा रही मुझे.
0: ध्यान ऐसे सिस्टम पे था, फिर मुझे याद आ रहा है मैं अकेली थोड़ी हूँ.
1: या तो मैं इतना बदसूरत हूँ.
0: नहीं नहीं, कम ऑन सुदेव,
1: नहीं ये सुनना
0: इतना
1: था
0: नहीं है तू.
1: ला ला ला ला. देखिए गाइस, ये मुझे ब्यूटी शेम कर रही है. ये ऐसे नहीं हो सकता, ब्यूटी शेम नहीं कर सकते आप. ठीक है, किसी को आप खूबसूरत हो इसका ये मतलब नहीं है किसी को भी ना खूबसूरत बोलोगे.
0: मैंने तो कुछ कहा ही नहीं.
1: तो आप खूबसूरत हाँ या ना?
0: क्या
1: है, हो ना?
0: क्या,
1: किसने मना किया? मना कर सकता है क्या कोई?
0: काम की बात पे आओ.
1: काम की बात में आते हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के बारे में देखे. कल से जो है फीफा 2026 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. ग्रुप ए में है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, कोरिया रिपब्लिक एंड चेक रिपब्लिक. उसके साथ साथ अगर हम कतर के ग्रुप की बात करें, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कतर के मैच का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो होने वाला है ग्रुप बी में, जहां पे कनाडा है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना है, कतर है और स्विट्जरलैंड है, जिसमें कतर का पहला मैच होने वाला है स्विट्जरलैंड के साथ 13 तारीख को, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं. आप अपना सपोर्ट जो है कतर के लिए यहाँ पे भाई यहाँ पे बताइए हमें मैसेज करके 3311 1063.
0: और सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: Fresh fish on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish. Crabs, prawns. Crafted with patience. Served with pride. Nanatal Pahar. The ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
6: Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're listening to Radio Alif.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
8: Zabardast evening. Make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Dr. Onair. Dr. Onair. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi everyone. It's me, Dr. Afzal, Naseem Healthcare. People are always suspicious about when the tooth to get filled and how they can recognize themselves that the tooth needs to be filled. Yeah, if you can make out brown discoloration or black discoloration or a chalky white appearance on the surface of your teeth, just immediately consult your dentist and get the required tooth or teeth to get filled. Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
2: Dr. Onair. Dr. Onair. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening. जबरदस्त evening. मेरे भाई. सिर्फ Radio Olive पर. जबरदस्त evening. जियो बिंदास.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: You're listening to Radio All 106.3 FM, Tanisha और सुदेव आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में, और सुदेव एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला है नाक के बारे में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस उसके पहले बता दूं तनिषा ने नाक कटा दी।
0: नहीं तो?
1: अरे आपकी नहीं मेरी।
0: क्यों?
1: ऐसे ही बस मन कर रहा था बोलने का। हमेशा आप बोलते हो तो मैंने सोचा मैं बोल देता हूँ।
0: खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारा ना।
1: क्या बात कर दिया आपने, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते।
0: वड़ा पाव,
1: वड़ा पाव ही बोला मैंने।
0: खाना है,
1: वड़ा पाव खाना है। ठीक है गाइस, आप लोग गाना सुनते रहिए, हम वड़ा पाव खा कर आते हैं। आप सोचिए, अरे नाक की बात तो बताओ।
0: यस यस यस,
1: नाक की बात बताए बिना कैसे जा सकते हैं हम? भाई आया है, बता के ही जाएगा।
0: इम्पॉसिबल्स।
1: क्या
0: जाएंगे ऐसे?
1: हाँ, वही डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे। ऐसे ही हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट करता है हमें अपने नाक को देखने से। देखिए होता क्या है कि आप सोचोगे कि सुदेव मतलब क्या कह रहे हो तुम, हम अपने नाक को तो देखते हैं, जब हम देखना चाहते हैं हम फोकस करके देख लेते हैं। बट नॉर्मली अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी नाक दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है बट ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। जैसे मैं तनिषा को इग्नोर कर देता हूँ जब वो मेरे से पैसे वापस मांगती है,
0: और अब मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जब ये मुझसे पैसे पहली बार में जो मांगता है ना, मैं इग्नोर कर देती हूँ।
1: मेरे पैसे जब तक वापस नहीं आएंगे मैं क्यों दूंगा?
0: एक्सक्यूज,
1: क्या चुपचाप दे दो? जितने तारीफ करी है मैंने वो सारा पेमेंट अभी भी पेंडिंग है आपका।
0: परा हो जा तू
1: बेटा, दो साल के पेमेंट पेंडिंग है अभी भी।
0: So coming back to the point, हाँ, कि हमारा ब्रेन कितना ज्यादा
1: ऐसे ही इग्नोर कर देता है,
0: स्मार्ट और शातिर है।
1: जैसे तनिषा ने थोड़ी देर पहले इग्नोर किया मेरे पेमेंट के रिक्वेस्ट को।
0: कितनी सच्चाई है इस बात में,
1: बहुत
0: तेरा
1: सच्चाई
0: ब्रेन
1: है।
0: ब्रेन तेरी मेमोरी को अल्टर कर रहा है।
1: बिल्कुल नहीं।
0: जी हाँ,
1: आप ये बताओ मैंने आपकी तारीफ की है कि नहीं?
0: नहीं
1: नहीं की आपकी तारीफ?
0: नहीं।
1: ये जनता गवाह है जो हमें सुन रहे हैं। वो जवाब मांगेगी तनिषा, जो भी हमें सुन रहा है बोलिए तनिषा सही नहीं किया आपने।
0: 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए क्या आप अपनी
1: # जस्टिस फॉर सुदेव,
0: क्या आप अपनी नाक देख पा रहे हैं? आईने के सामने जाकर मत देखना।
1: अरे
0: कहोगे हाँ मैं तो देख रहा हूँ,
1: मैं तो देख रहा हूँ, फोटो खींच के सेल्फी लेके भेज रहा, देखो मेरी नाक। अरे तो यही बात बताते हुए अपन लोग भी जरा पानी वानी पीकर आते हैं, वड़ा पाव के बारे में थोड़ा अपना सोच विचार जो हमने किया है उसके बारे में ऑर्डर कर आते हैं। आप यहाँ पे गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
0: जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: You're listening to Radio Ala 106.3 FM. Darisha Sudeep ke saath is zabardast evenings par.
1: Aur tata bye bye bol ke nikalne ka waqt aa chuka hai kyunki thodi der mein jo hai yahan pe Muskan aayegi aapke saath midnight lounge mein baatein karne ke liye. To hum zara yahan se nikalte hain. Hum milenge subah 6 baje. Yep. 6 बजे यहाँ पे इसी सीट पर आएंगे आपके साथ बात करने के लिए. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना.
0: और मैं मिलूंगी आपसे दोपहर 2 बजे. हाँ,
1: तो 2 बजे तक के लिए आप इंतजार करना. मैं 6 बजे आऊंगा, तनीषा 2 बजे आएगी और वीकेंड भी आने वाला है तो मजे ही मजे हैं.
0: यस,
1: एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छे से सोइए, अच्छे अच्छे सपने देखिए और कहते रहिए
0: जियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: आप अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam, yes, of course, Midnight Lounge. Aaj raat ek naya, phrase se baat shuru karte hain. Maine bhi ek naya word seekha hai, to socha kyun na aapke saath bhi share karu. Social media par aajkal ek term bahut viral ho raha hai, which is yellow person. और अगर आपने पहली बार सुना है तो इसका रिलेशनशिप स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है. येलो पर्सन वो होता है जो आपकी लाइफ में सनशाइन लेकर आता है, मतलब बहुत ही रिलेटेबल है येलो कलर सनशाइन. वो इंसान जिससे बात करके मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, जिसके सामने आप एक्टिंग नहीं करते, कोई फिल्टर नहीं लगाते, जिसके सामने आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो और अगर कुछ दिन भर में ख़राब हुआ है तो वो भी डिस्कस कर सकते हो. इंटरेस्टिंग बात यह है कि येलो पर्सन हमेशा बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर नहीं होता. कभी कभी वो मम्मी हो सकती हैं, छोटा भाई हो सकता है, कभी ऑफिस का कोई कॉलीग हो सकता है, कभी कोई टीचर हो सकता है, और कभी कोई ऐसा इंसान जो खुद नहीं जानता कि वो आपकी लाइफ में कितनी रोशनी लेकर आता है. सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर मनी नहीं है, रिलेशनशिप है, क्वालिटी रिलेशनशिप्स हैं. और इसीलिए कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बैठ करना बहुत सुकून मिलता है और कुछ लोगों के साथ पूरा दिन रहकर भी थकान. तो आज रात का सवाल है कि आपकी लाइफ का वो येलो पर्सन कौन है, और अगर वो भी सुन रहे हैं आपके साथ ही तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे. 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून. ये है मिडनाइट लाउंज, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज. वी वर टॉकिंग अबाउट येलो पर्सन कि आपकी लाइफ का कौन है वो येलो पर्सन जो आपकी लाइफ में सनशाइन लेकर आता है. एंड आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस कि भाई किसी की मम्मी जो है वो उनकी लाइफ के येलो पर्सन है, किसी के फादर उनकी लाइफ के येलो पर्सन है, किसी के फ्रेंड्स तो किसी के कॉलीग्स. पर आजकल एक और चीज़ है जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है. फ्रेज है बेसिकली मेन कैरेक्टर सिंड्रोम. सुनने में थोड़ा सा फनी लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हम सब अपनी लाइफ के हीरो तो हैं ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्टोरी को बोरिंग समझने लगते हैं. हम सोचते हैं एक्साइटिंग लाइफ सिर्फ मूवीज में होती है. एयरपोर्ट पर किसी और की लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है और इंस्टाग्राम पर किसी और की लाइफ सिनेमैटिक लगती है और अपनी एकदम नॉर्मल. लेकिन जरा सोचिए, एक बाहर से आया हुआ इंसान जो कतर में बैठा है उसकी कहानी कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. एक दिन घर छोड़ा, एक नए देश में आए, नए लोग, नए कल्चर, नई लैंग्वेज, नए चैलेंजेस. और ये किसी फिल्म का प्लॉट होता तो हम कहते वाह यार क्या स्टोरी है. लेकिन क्योंकि हमारी स्टोरी है तो हम उसकी वैल्यू करते ही नहीं है. मेन कैरेक्टर सिंड्रोम का पॉजिटिव वर्जन क्या कहता है आपको बताती हूँ. रोमांटिसाइज योर लाइफ. मॉर्निंग चाय, मेट्रो राइड, लेट नाइट ड्राइव, ऑफिस के बाद की वॉक, ये सब भी स्टोरी का पार्ट हो सकता है. सो आज रात का सवाल कि अगर आपकी लाइफ का एक पार्ट में पूछूं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो वो कौन सा होगा. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो भाई आजकल ना हर जगह सिर्फ एआई की बात हो रही है। ईमेल लिखना है, एआई लिख सकता है, एआई फोटो बना सकता है, एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है, एआई आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि एआई क्या कभी इंसान बन सकता है? और जवाब शायद हमेशा यही रहेगा कि नहीं, क्योंकि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी के दायरे से बहुत बाहर हैं। एक माँ के हाथ पर बनी हुए खाना, या उनका हाथ आपके सर पर रखना, एक दोस्त का मैं हूं ना कहना, एक हग, एक आंखों का कांटेक्ट और एक जेन्युइन लाफ, ये सब एआई तो नहीं दे सकता ना। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ प्रेजेंट रहना, ये कभी भी एआई नहीं कर सकता। हर टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में आई है, रेडियो आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, लेकिन एक चीज़ कभी रिप्लेस नहीं हुई, विच इज़ ह्यूमन कनेक्शन। तो शायद इसीलिए हम मशीन्स के बीच रहकर भी इंसान ढूंढते हैं। और आज रात का सवाल भी बस मेरा आपसे यही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एआई जो है वो क्या नहीं कर सकता, तो बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो कतर में रहने वाले लोग इस बात को जरूर समझेंगे, जो हम पहली बार यू नो अपने कंट्री से बाहर आते हैं तो कल्चर शॉक तो होता है, नया एनवायरनमेंट, नए रूल्स, नया लाइफस्टाइल। लेकिन एक और शॉक होता है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, विच इज़ रिवर्स कल्चर शॉक। यानी जब आप सालों बाद वापस घर जाते हो और अचानक से आप देखते हो कि यार कुछ चीज़ें ना एकदम चेंज लग रही हैं, और वो यू नो सब बदल गया है, वो गली चेंज हो गई है, वो चाय की दुकान बदल गई है, वो लोग भी नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें पहले जैसा फील नहीं करते, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को बदल देता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, आपकी नज़रिया बदल जाता है। और कभी कभी घर लौट कर भी लगता है कि यार आप दो दुनिया के बीच ना खड़े हुए हो, और ना पूरी तरह से यहाँ ना पूरी तरह से वहाँ, और शायद यही यू नो लाइफ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और आज का सवाल भी आपसे यही है कि कतर से घर जाकर सबसे सरप्राइजिंग चीज़ आपको क्या लगती है, और क्या आपको भी कभी रिवर्स कल्चर शॉक फील हुआ है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज मैं एक ऐसी किताब लेकर आई हूँ जो आपको बढ़िया लगेगी सुन के, जिसका टाइटल है इंसान को रोक कर सोचने पर मजबूर कर देना। ठीक है, 4000th week किताब का नाम है, ऑथर है ऑलिवर। एक सिंपल कैलकुलेशन करता हुआ ऑथर, ठीक है, अगर एक इंसान एवरेज 80 साल तक रहता है, मतलब 80 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो उसकी पूरी जिंदगी लगभग 4000 हफ्तों की होती है। बस 4000 हफ्ते, सुनने में अजीब लग रहा है ना, हम हमेशा सालों में सोचते हैं, लेकिन जब आप जिंदगी को हफ्तों में देखते हो तो अचानक से टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। और फिर एक सवाल सामने आता है कि हम इतनी जल्दी में क्यों हैं, हम हर चीज़ को फ्यूचर के लिए क्यों पोस्टपोन करते हैं, बाद में ट्रैवल करेंगे, बाद में इंजॉय करेंगे, बाद में टाइम निकालेंगे, बाद में खुश रहेंगे। लेकिन किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि हम लाइफ को कंट्रोल करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। और सच कहूँ, कतर में रहने वाले बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। सो हम घर से दूर हैं फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फ्यूचर बनाते बनाते अपने प्रेजेंट को ही निकाल रहे हैं। सो आज मैं आपसे बस यही बोलूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सालों से बाद में के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए क्या सीरियसली बाद में कभी आप वो चीज़ करेंगे। नंबर तो है 3311063 और आप इस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

तो कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में सबसे अनोइंग लोग कौन होते हैं? जो एडवाइस देते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बाद में वही लोग सही निकल जाते हैं। बचपन में पेरेंट्स कहते हैं हेल्थ का ख्याल रखो, हम हंसते रहते हैं पैसे सेव करो, हम इग्नोर कर देते हैं और टाइम बहुत कीमती है ये कहते हैं, तो हर बंदा ना इंसान की फेवरेट लाइन बोलता है। लेकिन फिर एक एज आती है जहां हम खुद वाली लाइंस बोलने लगते हैं, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी टीचर है ना जो पहले एग्जाम लेती है और फिर लेसन देती है। और मुझे लगता है कि हम सबके पास एक एडवाइस है, जैसे हमने सालों तक बहुत चीज़ें इग्नोर की है और फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सही था। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जो लोग तुम्हारे साथ खुशी में हैं उनकी वैल्यू मत समझो, जो मुश्किल वक्त में है उनकी समझो। और उस वक्त नॉर्मल लाइन लगी, पर आज लगता है कि यार ये गोल्ड लाइन है एकदम। तो आज रात आपसे भी मैं यही कहूंगी कि जो लोग आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं हमेशा आप उनका साथ दीजिएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लव,
2: ये है मिडनाइट

So, आज रात एक लिस्ट की बात करते हैं, एक ऐसी लिस्ट जो हम सबके पास है लेकिन लिखी हुई नहीं होती, दिमाग में होती है. आई डू इट लेटर. गिटार सीखना है बाद में, ठीक है, बुक पढ़नी है बाद में, फिटनेस स्टार्ट करनी है बाद में, ट्रिप करनी है लेकिन अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी को कॉल करना है अभी तो बहुत आलस आ रहा है, फिर कभी. और फिर एक दिन पता चलता है कि लेटर जो है नाम का कोई दिन जो है वो कैलेंडर में होता ही नहीं है. मतलब हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे पर बाद वाला कोई दिन है ही नहीं. इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान फ्यूचर को ओवर एस्टिमेट करता है. यू नो, हमें लगता है कि फ्यूचर में ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा मोटिवेशन होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, फ्यूचर में फ्यूचर वाले हम आज वाले हम ही होते हैं, बस थोड़ा और बिजी, बस थोड़ा और टायर्ड, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल. तो शायद कुछ चीज़ें ना परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करती, बस स्टार्ट करने का वेट कर रही होती है. तो आज रात का सवाल भी आपसे यही है कि आपकी आई डू इट लेटर लिस्ट में सबसे पुरानी चीज़ क्या है. 3311063 इज़ माई नंबर. वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ना फिटनेस को लेके बहुत आलस आता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है कल से कर लेंगे, आज बस स्टार्ट करते हैं, आज वार्म अप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ऐसे करते करते पता नहीं कब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चला. फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं यार, जो भी हो रहा है करना है आज से. सो आप भी ऐसे ही करिए और ये अपनी जो बाद वाली लिस्ट है उसको थोड़ा सा आज में लेकर आइए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

और देखते ही देखते मेरे जाने का वक्त हो गया। आज की रात अभी अपनी मंजिल के करीब आ गई है। जाने से पहले एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए आज की रात आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकती, सिर्फ एक, तो उसमें क्या लिखा होता? मतलब कुछ एक अमेजिंग सा मैसेज होता, कॉल योर फैमिली, टेक दैट रिस्क, या फिर सिर्फ इतना कि यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। हम उस जगह को देखते रहते हैं जहाँ पहुँचना है, उस जगह को नहीं जहाँ हम चले थे, जहाँ से या फिर जहाँ तक आप पहुँच गए हो। आपको ना इस वक्त सबसे ज़्यादा किस मैसेज की एक्चुअली ज़रूरत है, वो मैसेज आप खुद को भेजिए। और आई विल से कि खुद को मोटिवेट करने से बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, ऑफिस के बाद रिलैक्स कीजिए, अपना फेवरेट खाना खाइए। आई नो बहुत थकान हो जाती है, घर जाके बिल्कुल मन नहीं करता। और एक बार जब आप एसी चला के अपने बेड पे या काउच पे बैठ जाते हो और नेटफ्लिक्स और यू नो चिल वाले मोड में आ जाते हो, तो बिल्कुल मन नहीं करता। बट ट्रस्ट मी, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत मजा आएगा। सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। अब वीकेंड भी है कल, थर्सडे के साथ मिलते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव,
2: ये है

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सूरतदार आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: This hour is brought to you by
1: Homes R Us. We complete your home.
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

106.3 FM, Gio Bendaz.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट.